महिषासुरमर्दिनि श्रीचामुण्डेश्वरी हरणे तानुलिद शृङ्गारलहरी हरिये मरुणाद महदैसिरी ब्रह्म

खोने और पाने के बीच पल भर का फासला है। इनकार मत करो, आगे बढ़ो, थाम लो उसका हाथ, वरना तुम्हारा इनकार मेरा इंतजार बन जाएगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, देखना चाहता हूं प्यार के इस मोड़ के आगे क्या है। आगे बढ़ो।

आग, कभी कभी रोशनी, कहीं कहीं शोर, रौनकें। कहीं आग आग, कहीं धुआं धुआं, कभी आस पास, कभी यहां वहां, कभी शोर हो तुम, कभी मौन हो तुम।

जिसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग गए, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

तेरी सादगी अनमोल है, किरदार बेमिसाल है, तू जो भी है लाजवाब है, तू ख्याल है या एक सवाल है, तेरे सामने जो भी आएगा उसे तुझसे प्यार हो ही जाएगा।